कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी से प्यार जरूर होता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी के लिए जरूर बना होता है। दिल में प्यार, प्यार की चाहत, और वही चाहत बनती है

की दरमियां सांसों ने कुछ कहा, कुछ कहा, यादों की दास्तां अब कर रही है बयां, छोड़ न जाना मुझे मंजिल की राह पे, मेरी मंजिल तो है।

मेरी बंदगी, मेरी इबादत, और इस इबादत की रोशनी में नजर आ रहा है तुम्हारा चेहरा, चेहरा, चेहरा जो मेरी दुआओं में बस चुका है, और अब तुम बन चुकी हो

0: दोनों की फितरत है जान लेना, कौन सी साली मौत ज्यादा मजा देती है, बस ये देखना है।
1: ए दम्बे,
0: तू कौन सी मौत मरेगा रे?

0: your life, your music, your 89.1 FM, NTN Radio.
1: मैं पहले कभी इतनी खुश नहीं रही, ना ही इतनी कंफ्यूज्ड। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। मैं जा रही हूँ, कहाँ पता नहीं, लौट कर आऊंगी पता नहीं, हो सके तो मुझे माफ कर देना।

हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो दीदावर राजकपूर साहब थे, अब ना जाने इस नरगिसी आँख वाली इंडस्ट्री को अगली सदी कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि राजकपूर फिर आए। उन्होंने जो किया कमाल किया, हटके किया, राजकपूर जैसा कलाकार फिर नहीं होगा।

0: Hey, relax.
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।